0: इसके नतीजे में कतर आलमी सतह पर एक बावकार और मुअस्सर मकाम हासिल करने में कामयाब हुआ। इसी तनाजुर में अरब और गैर मुल्क के सहाफ़ियों और कालम निगारों ने भी साहिब सुमो अमीर वालिद शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी रहमतुल्लाह की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने जदीद कतर की तामीर, इलाकाई और बैन अवी सतह पर उसके मकाम को मुस्तहकम बनाने और ऐसी खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखने में उनके कलीदी किरदार को सराहा, जो सालिसी कुशादा नजरी और सफारती और माशी रवाबित के फ़रोग पर मबनी थी। साहिब सुमो अमीर वालिद रहमतुल्लाह ने कतर में हमागीर तब्दीली के सफ़र की क़्यादत की, मुल्क की सियासी माशी और सफारती सलाहियतों को मजबूत बनाया, जिसके बाइस कतर अरब और आलमी दुनिया आलमी दोनों सतहों पर एक मुअस्सर और बाअसर किरदार अदा करने वाला मुल्क बन गया। दूसरी जानिब बैरूत में लुबनानी हुक्काम ने भी साहिब सुमो अमीर वालिद शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी रहमतुल्लाह की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने उनकी कामयाबियों से भरपूर ज़िंदगी को याद करते हुए कहा कि इन्हीं खिदमात ने कतर को इलाकाई और आलमी सतह पर मुमताज़ मकाम दिलाया। उन्होंने अरब उम्मत के मसाइल, बिलखसूस लुबनान की जदीद तारीख के अहम और नाजुक मराहिल में उसके साथ भरपूर तआवुन और हिमायत में उनके किरदार को भी सराहा। लुबनानी हुक्काम ने कतर न्यूज़ एजेंसी कना से खसूसी गुफ्तगू में कहा कि साहिब सुमो अमीर वालिद रहमतुल्लाह का सियासी और इंसानी वरसा लुबनानी आवाम के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगा। उन्होंने मुज़ाकरात, इस्तेहकाम और अमन के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दामात किए और लुबनान की तामीर नौ और तरक्की में गिरा कदर खिदमात अंजाम दी। इस अजीम सानेह इरतहाल बर इलाकाई और बैन अवी सतह पर इजहार यकजहती के साथ साथ साहिब सुमो अमीर वालिद शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी रहमतुल्लाह के इंतकाल पर मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से ऐलान करदा सरकारी सोग का सिलसिला भी जारी रहा और इन ममालिक में सरकारी इमारतों पर कौमी परचम भी सरनिगू रखे गए। उर्दू रेडियो कतर एफएम 107 के स्टूडियो से तकनीकी मावीन नूर और मुझे फुरकान शाहिद को दीजिए इजाज़त। फी अमानिल्लाह।
1: अरब खित्ते की सियासी तारीख में कतर के अजीम फुकदान साहिब सुमुल अमीर वालिद शेख अहमद बिन खलीफा अल सानी रहमहुल्लाह एक ऐसी गैर मामूली शख्सियत के तौर पर याद किए जाएंगे जिन्होंने बेहतरीन क़ियादत के साथ इक्तदार की मिसाली मुंतकिली की रिवायत भी कायम की। आप वो पहले अरब रहनुमा थे जिन्होंने अपनी ही मर्जी से इक्तदार साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन अहमद आल सानी के सुपुर्द किया। उस मौके पर आपने इस बात की वजाहत की कि अब वक्त आ गया है कि क़ियादत की जिम्मेदारियां नई नस्ल के हवाले की जाएं। आपका ये तारीखी फैसला इक्तदार की पुरअमन और महजब मुंतकली की एक मुनफरद मिसाल बन गया है और इस फैसले का ये पैगाम था कि हकीकी क़ियादत सिर्फ कौमों की तामीर तक महदूद नहीं होती बल्कि उनकी तरक्की और इस्तेहकाम के तसलसल को यकीनी बनाना भी इसका अहम हिस्सा है। यूं वतन के अजीम फुकदान साहिब सुमुल अमीर वालिद शेख अहमद बिन खलीफा अल सानी रहमहुल्लाह एक ऐसा रोशन और पायदार वरसा छोड़ गए जिसे रियासत कतर और पूरे खित्ते की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा।

भी मुफाहमत के फ़रूग़ में भी कलीदी किरदार अदा किया। लुबनानी रहनुमाओं ने कहा कि साहिब सुमो अमीर वालिद शेख तमीम शेख साहिब सुमो अमीर वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल सानी की सियासी बसीरत, इंसान दोस्त खिदमात और अरब ममालिक की हिमायत पर मबनी वरसा हमेशा कदर व एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कसर लुसैल में साहिब सुमो अमीर वालिद शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत करने वालों से मुलाकात की और उनकी तरफ से पेश की गई ताज़ियत उसूल की। इस मौके पर मुतअद्दिद शुयूख, वज़रा, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, आला ओहदेदारान, सरबराहान ममलकत, शहरियों, मुकीम अफराद और दोस्त बरदर ममालिक से आए हुए मेहमानों ने साहिब सुमो अमीर से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया और सुमो अमीर वालिद के लिए अल्लाह ताला से रहमत